जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन जाउन दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सिख पढ़ दे।

कनेर कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी।

सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा कीआं वड्याईया तुदवैण सिद्दीक ने ना पाईया करम मिले नाही ठक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू दहे तिसे क्या चारा नानक सच सवार नहारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं आखण औखा सचा नाऊ सचे नाम की लागे भूख पुत भूखे खाए चली हैं दुख सो क्यों विसरै मेरी माए सचा साहिब सचे नाए रहाओ सचे नाम की तिल वड्याई आग थके कीमत नहीं पाई जैसा मिलके आखण पाहे

जात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बासनाथ राह गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

सैल पत्थर में जनते उपाय ताका रिजक आगे कर धरया। मेरे माधु जी सतसंगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम

राग आसा महला चौथा सुप्रख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोपुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं तुझ जी हर सच्चे सिर

कर किरया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई। तुद आपे सृष्टि

बरणद भिन्न भिन्न तो है तिती तुमरा लखा ना जय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुपस रूपा रंक वयो राव कहीं पूपा अंड जे रह से तज किन्नी

सिखियो वारिय सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे आस तो जे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे पुरख जम

ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती।

सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुमते होए तुमरी गत मित तुम्ही जानी सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर

गिस्से गुरमुख ब्रह्म विचारो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैरो अकाल मूरत अजूनी सैभम

करम धरम संजम सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जोन प्रम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो।

0: जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताई। सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जो हरि स्वास्थ्य तिस तिस दीवानी पाई। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
1: लखन अखें चिकें लख न परवा लख तो बिपरती।

पड़ पड़ गड्डी लगी है पड़ पड़ परिये पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खात पड़िए जेते बस बस पड़ी जेते मां पड़िए जेते आज पड़ी जेते सास।